को तुना मुकम्मल समझा जाता है। हथेती बाज रोटियों को गोश्त या सब्जियों से भर के पकाते थे। दौरे हाजिर में खासतौर पर देहातों में तंदूरी रोटियां और नान जैसी रवायती रोटियां हथेती दस्तरखान की अक्कासी करती हैं। यही नहीं बल्कि मुतद्दद लवाजमात से भरे आटे से पकाए जाने वाले मांतो और बोरेक जैसे पकवान भी हथेती रवायात का दवाम कहे जा सकते हैं। दौरे हाजिर के अनातोलिया दस्तरखान की जीनत अनवाओ इकसाम के कबाब, कोफ्ते और मिट्टी की हांडी में दम पुख्त गोश्त के पकवान भी अपने अंदर हतीती दस्तरखान के आसार समेटे हुए हैं। यही नहीं, हतीतियों का मुख्तलिफ मसाला जात और जड़ी बूटियों के साथ गोश्त की लजत में इजाफा करना तबाखी की एक ऐसी जहत है जो अनातोलिया के मौजूदा दस्तरखान में मसालों के इस्तेमाल की बुनियाद करार दी जा सकती है। हतीती दस्तरखान की एक और खूबी मखसूस मौके और तकरीबात के पकवान हैं। हतीती दीनी और समाजी तकरीबात में बड़ी बड़ी दावतों का अहतमाम करते थे। इन दावतों में पेश किया जाने वाला खाना माशरती रवाबत को मजबूत बनाता था। अनातोलिया में शादी ब्याह, ईदैन और दीगर मखसूस दिनों में दी जाने वाली खाने की दावतें भी इसी हतीती रवायत का दवाम कही जा सकती हैं। सामने इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। अपने मेज़बान मिसबाह शाहीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।

स्पेशल ब्रांच और कई दीगर पुलिस यूनिट्स के अहम दफातर वाक़ हैं। एक पुलिस एहलकार ने बताया इस दहशतगर्द और खुदकुश हमले में कम से कम 31 अफराद जिनमें 16 पुलिस एहलकार शामिल थे हलाक हो गए हैं और 100 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। पुलिस एहलकार ने AFP को नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया चंद दहशतगर्द तहाल कोहाट पुलिस लाइन की खसूसी ब्रांच के हिस्से में मशहूर है। इनके साथ रात गए तक फायरिंग का तबादला जारी रहने की दुरुस्त तादाद वाजह नहीं। मकामी दहशतगर्द ग्रोह IMMT जो दहशतगर्द कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुस्लिम एक शाखा ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ ने जुम्मे की शाम इस हमले के मुज़म्मत की धमाके के नतीजे मुतद अफराद को जख्मी होने पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। इस तरह सदर आसफ जरदारी हलाकतों पर अफसोस का इजहार करते हुए धमाके में जख्मी अफराद की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने कहा फितनतुल खारिज और बैरून सरपरस्ती के साथ काम करने वाले दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा कौमी सलामती के लिए लाजमी है। इसराइल अखबार मारिफ के मुताबिक इसराइल फौज को 3 साल जंग के बाद फौजी एहलकारों उसकी साजुसमान की शदीद किल्लत का सामना है। फौजियों की छुट्टियां मुअत्तल करने की तैयारी में है। अखबार ने कहा इसराइल फौज में फौजियों की तादाद में शदीद कमी के नतीजे में उनके बुनियादी हकूक के खिलाफ वर्जी करने में छुट्टी देने से इनकार करने के लिए तैयार है। एहलकारों की कमी के बावजूद मारिफ ने अक्टूबर 2023 में गज़ा डिवीजन के इंटेलिजेंस अफसर के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल एक की बरतरफी की इत्तला दी। अखबार ने लिखा है इसराइल फौज के पास मतलूब हद तक टैंक और बेहतर बंद अहलकार ले जाने गाड़ियां मौजूद नहीं। मजीद कहा 3 साल जंग की तादाद में काफी कमी लाई है जबकि बाकी मानदा खराब हो चुकी हैं। अखबार ने कहा सियासी वजूहत की बिना पर वज़ीर ख़ज़ाना बेसिल स्मोत्रिच इसराइल फौज के फंड कम कर सकते हैं और शिकायतों का सामना भी कर सकते हैं। मंगल को इसराइल के चैनल 12 ने रिपोर्ट किया था फौज ने अमरीकी बोइंग से 12 अपाची हमलावर हेलीकॉप्टर्स की मनसूबाबंद खरीदारी खत्म कर दी है क्योंकि इसकी खरीदारी बजट में कमी वाकया हुई है। ये रिपोर्ट इस दिन आई जब ज़ियाज़म बिन्यामिन नेतन्याहू एक मामूल के इजलास के दौरान इस बेखिलाफ रहमा या लापिट को फौजी खरीदारी के बजट में इजाफे पर तआवुन करने के लिए कायल करने में नाकाम रहे हैं। अकवाम के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने वाशिंगटन के इस फैसले पर गैर अफसोस का इजहार किया कि यह मुसलसल दूसरे साल भी सदर फलस्तीन महमूद अब्बास को वीजा देने से इंकारी है जिसकी बिना पर अगले हफ्ते होने वाली अकवाम के जनरल असेंबली में शिरकत नहीं कर सकेंगे। अकवाम के तर्जमान स्टीफन दुजारिच ने जुम्मे को एक बयान में कहा सेक्रेटरी जनरल के इस फैसले के असरात पर तश्वीश है जो रियासत फलस्तीन के अकवाम के अमूर में मुकम्मल शराकत पर पड़ेगा। उन्होंने मजीद कहा तंजीम के मुनासिब तरीके से काम करने के लिए तमाम वफूद की मुकम्मल तौर पर शराकत लाजमी है। अमरीकी महकमा खारजा ने ऐलान किया था मंगल को शुरू होने वाले जनरल असम्बली के इजलास में शमूलियत के लिए अब्बास और दीगर फलस्तीनी हुकाम को वीजा जारी नहीं किया जाएगा। दुजारिच ने बताया गुटेरेस ने मेजबान मुल्क के तौर पर अमरीका से यकीनी बनाने पर जोर दिया तमाम फूद की इसकी जिम्मेदारियों के मुताबिक वीजे जारी किए जाएं। ट्रंप साहब ने गुज़िश्ता साल फलस्तीनी वफ़ को वीजे जारी करने से इनकार किया था जिसके बायस अब्बास जो जनरल असम्बली में बाकायदगी से शिरकत करते हैं असम्बली को वीडियो के जरिए खिताब करना पड़ा था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कानून पर दस्तखत कर दिए जो यूक्रेन पर रूस की जंग के बायस रूस पर दबाव डालने के लिए नई पाबंदियों की मंजूरी देता है। जुमे को ट्रंप की मंजूरी वाले इस कानून का हदफ रूस के तवानाई दिफाई शोबे के साथ साथ सदर व्लादिमीर पुतिन और दीगर सीनियर हुकाम है। यह कानून रूसी अलिगारस इनके अहल खाना गैर मुल्की अफराद रूसी बैंकों माली इदारों को भी निशाना बनाता है। मास्को के बकौल शेडो फ्लीट यानी ऐसे टैंकरों के बेड़े को भी निशाना बनाता है जो मगरबी पाबंदियों से बचने के लिए इस्तेमाल होते हैं और ट्रंप को ये इख्तियार भी देता है कि वो रूसी तेल गैस के बड़े खरीदारों चीन और भारत पर 100% तक महसूलात आयद कर सके। रिपब्लिकन अक्सरियत के हामिल नुमाइंदगान ने इस पैकेज को 159 वोटों से मंजूर दिया था। विभिन्न कंपनियों का मुल्की अनासर को भी निशाना बनाता है जो रूस की फौजी मदद करते हैं ईरान से मुतलक पाबंदियों में तोसी लाता है। तहम टैरिफ आयद करने के वसी इख्तियार ने डेमोक्रेट्स के अंदर एक गैर मामूली तकसीम पैदा कर दी जो ज्यादा यूक्रेन की हमायत करते हैं मगर ट्रंप को तजारत के मामले में वसी तर इख्तियार देने के खिलाफ रहे हैं। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा इस कानून की मंजूरी अलामती अहमियत रखती है। उन्होंने अमरीकी कानून साजों का शुक्रिया अदा किया। ज़ेलेंस्की ने जुम्मे को कहा लेंडसी के लिए बेहतरीन इहतराम यह होगा इस कानून की शिकों को मुकम्मल तौर पर जितना जल्द मुमकिन हो नाफिज किया जाए। रूसी वजारत खारजा बरतानिया के चार्टर्ड अफेयर्स को तलब करते हुए यूक्रेन को ड्रोन्स दीगर हथियारों के निजाम की फ्राहमी में इजाफे पर इत्तेजाज किया। जुम्मे को जारी एक बयान में वजारत ने लंदन पर इल्जाम लगाया वो जंग को तूल देने

0: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: ईरान जंग पर अमरीकी अखराजात $43 अरब तक पहुंच चुके हैं। नए दादोशुमार के मुताबिक 28 फरवरी से अब तक ईरान के साथ जंग पर अमरीकी फौजी अखराजात $43.6 बिलियन तक हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक सिर्फ हथियारों के अखराजात $28.1 बिलियन थे। यह दादोशुमार एक माह पेशतर कांग्रेस के बजट ऑफिस की तरफ से बताए गए $21.7 बिलियन के मुकाबले में तेजी से इजाफे की नुमाइंदगी करते हैं। कांग्रेस के बजट ऑफिस ने खबरदार किया है कि तनाज़े की शिद्दत के एतबार से अखराजात में तकरीबन $3 बिलियन महाना इजाफा हो सकता है। जंग के माशी असरात तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव मार्केट के उतार चढ़ाव से भी जाहिर होते हैं, जबकि इस तनाज़े में अमरीकी फौजी भी हलाक और जख्मी हुए हैं। अमरीका और डेनमार्क के माबेन ग्रीन लैंड पर मुहदा तय पा गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है अमरीका और डेनमार्क के दरमियान ग्रीन लैंड में अमरीकी फौजी मौजूदगी को बढ़ाने का मुहदा तय पा गया है। कोपनहेगन और न्यूक ने तस्दीक की है कि इस मुहदे पर आइंदा हफ्ते न्यूयॉर्क में खानता की जनरल असम्बली के दौरान दस्तखत किए जाएंगे। ट्रंप ने कहा मुहदा अमरीका को ग्रीन लैंड की सलामती पर मुस्तकिल कंट्रोल देता है। वाशिंगटन फौरी तौर पर खत्ते में अपने फौजी वजूद को बढ़ाना शुरू कर देगा। स्कूलों में सीखी गई मालूमात रोजमर्रा जिंदगी में कितनी लागू होती हैं के हवाले से हालिया पीसा रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, फिनलैंड बुनियादी खानदगी और रियाजी की सलाहियतों से महरूम नौजवानों की शराह तकरीबन एक तिहाई तक पहुंच गई है, जबकि बरतानी समूह में कमी के रुझान से बाहर रहा। रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि बरसम भर में देखा जाने वाला यह तनजुल वबाई दौर के सीखने के नुकसान से कहीं ज्यादा है। इसके पीछे सख्ती मिसाइल कार फरमा है। मसल मुस्तकिल सासा की कमी, निसाब के मसाइल, स्मार्टफोन्स की वजह से तवज्जो के दुरानिया में गिरावट, जर्मी तलबा की सबसे कमजोर कारकर्दगी ने एक बार फिर वाजह किया तालीमी कामयाबी का ताल्लुक खानदानों के समाजी इक्तसादी हालात से भी है। खासतौर पर कम आमदनी वाले खानदानों के बच्चों में नाकामी की शरह में इजाफा नमाया रहा। हॉलैंड में इस्लाहितों में तारीखी कमी इस बात की निशानदेही करती है नौजवानों के एक तिहाई से जायद रोजमर्रा जिंदगी के लिए जरूरी बुनियादी महारतों से महरूम है। उमारिन का कहना है गिरावट मुस्तकिल साख्ती बहरान में बदल रही है। रवायती तलीमी चैंपियंस जैसे फिनलैंड, स्वीडन में इसी किस्म की कमी देखने में आने पर हुकाम और तालीमी यूनियंस फौरी इसलाही इकदाम करने, क्लासों में डिजिटल तोजो हटाने वाले अवामिल से निपटने की तरफ माइल हो गई हैं। 5-9 अक्टूबर को तुर्की के बहरूम के साहली शहर अंताली में मुनाकिद होने वाले 77वें बैन अवी एस्ट्रो नॉटिकल कांग्रेस ने तहकीक की मजामीन कब अस वक्त रजिस्ट्रेशन में रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। नेस्ट कन्वेंशन सेंटर में 100 से ज्यादा ममालक के 10,000 से ज्यादा शुरका मतवो को हैं, जहां इवेंट का कैरेटा कैरेटा टर्क्वाइज मेहमानों का खैर मतम करेगा। बैन अवी एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस आलमी खलाई और हवाबाजी बरादरी के लिए सालाना सबसे बड़ा और बावकार इज्तमा है। सालाना बुनियादों पर मुनाकिद होने इस कांग्रेस का अहतमाम बैन अवी एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन करती है। इसे तुर्की की सनत और टेक्नोलॉजी वजारत हम आहंग करेगी। कांग्रेस की मेजबानी तुर्क खलाई एजेंसी करेगी, जबकि इसके शरीक मेजबान साहा इस्तंबुल होंगे, जो तुर्की की सबसे बड़ी दिफाई हवाई और खलाई सनत है। IAC के मुंतजमी को 108 मालिक से 8,330 मकाले मौसूल हुए, जिसने जमा कराने की तादाद शरीक मालिक दोनों के इतबार से रिकॉर्ड कायम किया है। यह तादाद 2024 के मिलान कांग्रेस के तकरीबन 7,000 मकालों, 2025 के सिडनी कांग्रेस के 6,400 मकालों को भी पीछे छोड़ गई है। तुर्की ने 1,810 आर्टिकल्स जमा कराए, जो IAC की तारीख में किसी एक मुल्क की जानब से जमा कराए जाने वाली सबसे ज्यादा तादाद है। तुर्क महाकिन ने कबूल किए गए मकालों की तादाद में भी सबकतगी और 674 मकाले मंजूर हुए।

कांग्रेस को 83 ममालिक से 3,000 से ज्यादा कब अस वक्त रजिस्ट्रेशन भी मौसूल हुई, जो कब अस वक्त रजिस्ट्रेशन का एक रिकॉर्ड भी है। गूगल जेमिनी ने अपने सिक्योरिटी टेस्ट में 3 फर्मों के सिस्टम तक रसाई हासिल कर ली है। गूगल के जेमिनी एआई ने मुबैना तौर पर मई में किए गए सिक्योरिटी टेस्ट के दौरान इंसानी मुदाखलत के बगैर 3 कंपनियों के सिस्टम तक रसाई हासिल की। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक गूगल एआई की इंसानी मुदाखलत के बगैर हैकिंग करने का पहला मारूफ वाक्य है। ये टेस्ट सिक्योरिटी कंपनी रेगुलर ने करवाया। एक मिसाल में जेमिनी ने पासवर्ड का तयन करके रसाई हासिल की। दो दीगर मिसाल में इसने हिफाजती इकदाम को नजरअंदाज करने के लिए अवामी तौर पर काबिल रसाई जखीरा में पाए जाने वाले लॉग इन असनाद का इस्तेमाल किया। बताया गया इन कमजोरियों का हफ्तों पहले तयन हुआ था। गूगल ने भी इस वाक्य की तस्दीक की है। इसी तरह की पेशरफ की इतला एआई सिस्टम्स में मेटा, एंथ्रोपिक और ओपन एआई से भी मिली है। इसके साथ ही इस तुर्की से खबरें खत्म। سامنے ہم صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے مخاطب ہیں۔ لیجیے اب ترکیہ کی گلوکارہ ایلم اکتاش کی آواز میں ایک ترکی گیت سنتے ہیں۔ گانے کے بول ہیں زور یلار۔